0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए
1: जीवन मधुका सुरक्षित

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

अब तुम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तो कितना ब्लडी फुल है। लुकिंग मेरा अब अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है।

0: अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुआ
1: जो भी रहने।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेङ्गी एफएम

0: मुख्य समाचारका प्रायोजक
1: आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउन खरिद बिक्री गर्न तथा राशि अनुसारका एवं अन्य पत्थरहरूका लागि जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर सात लमजुङ प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा।
2: ओझेलमा पर्यो अन्नपूर्ण वैकल्पिक पदमार्ग। साविक पदमार्गमा मोटर चल्दा आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। बाल विवाह मुक्त सुन्दर बजार हाम्रो साझा दायित्व विषयमा नगर स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिता। विद्या ज्योति माविका अनुपम गौली प्रथम। जिल्ला अदालत लमजुङमा गत आर्थिक वर्षमा 9,64,000 क्षतिपूर्ति फर्स्यूट। गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा बढ़ी मुद्दा फैसला। र लमजुङमा एक आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट दुईजना मानिस सहित 151 पशुधनमा क्षति। 10 लाख राहत रकम वितरण।